जी इट हैपेंस को आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में हम आगे बढ़े हैं। उसके पहले आइए जरा उनसे गुफ्तगू कर ली जाए जिनके लिए ये पल बहुत ही खास स्पेशल है। जी हाँ, जिनका हैप्पी बर्थडे है उन सभी को बर्थडे बहुत बहुत मुबारक, जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और जिनके लिए आज का दिन खास है वो लोग जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, उन सभी को वही शादी का ये दिन जो है, शादी का ये पल जो है, जब एक साल पहले, दो साल पहले या 25 साल पहले आपकी शादी हुई थी, ये पल जो दोबारा आया है जिंदगी में, बहुत बहुत मुबारक हो। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, आप सबके नाम ये अगला ट्रैक तो बनता है, तो प्ले करते हैं, सुनिए इसे और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर आपके दिमाग में चल रही ओवरथिंकिंग या बेकार की सोच एकदम से शांत हो जाए तो कैसा लगेगा? वो पल जब दिमाग में कोई डर, कोई शक, कोई क्या होगा नहीं होगा, बस सुकून का एक गहरा समंदर होगा। एक्चुअली यही वो पल है जब जिंदगी असली मायनों में शुरू होती है। ओवरथिंकिंग के बाद की जिंदगी असल में दूसरी जिंदगी की शुरुआत होती है। ओवरथिंकिंग इंसान को इतना शोर देती है दोस्तों कि दिल की आवाज कहीं दब जाती है। हम सुनना तो चाहते हैं अपनी आत्मा को, पर दिमाग का शोर हमें उसे सुनने ही नहीं देता। पर जब सब शोर थमता है, जब आप हर क्या होगा को पीछे छोड़ देते हैं, तो पहली बार आप खुद की आवाज सुन पाते हैं। और यही वो आवाज है जो कहती है कि अब डरना बंद करो और जीना शुरू करो। और इसी जीने के नाम चलिए सुनते हैं ये अगला ट्रैक। Stay tuned, Radio Briswani, Sataakshi ke saath aap sun rahe hain It Happens.

एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपकी अपनी रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। खुद से दोस्ती करना सबसे मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि इसमें सामने वाला कोई और नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं। कोई ताली नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता, कोई आपको ये भरोसा नहीं दिलाता कि आप सही रास्ते पर हैं। और शायद इसी वजह से हम इस रिश्ते से भागते फिरते हैं। हम दूसरों के साथ रहना चुनते हैं ताकि खुद से सामना ना करना पड़े। लेकिन जब जिंदगी एक एक करके सारे रास्ते छीन लेती है ना, तब इंसान मजबूर हो जाता है खुद के सामने खड़ा होने के लिए। और वहीं से तो शुरुआत होती है सेल्फ कनेक्शन की। और इसी सेल्फ कनेक्शन के नाम फिलहाल सुनिए सताक्षी के साथ ही अगला ट्रैक। एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए मॉर्निंग शो और एंजॉय करते रहिए मॉर्निंग की वाइब्स मेरे।

0: wedding suits and accessories, top quality designer sarees, lehengas, salwar kameez, party wear and men's shirts and suits. You can also order tailor-made suits from Rani Creations. Itna hi nahi, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware bhi uplabdh hai. For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Wollongabba. Open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर और इट हैपेंस में अभी हम हैं आज के गानों की हैट्रिक में। जी आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का साथ लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज गानों की हैट्रिक में पहला ट्रैक कौन सा लेने जा रहे हैं।

गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। गानों की हैट्रिक का ये रहा अगला ट्रैक, इसे भी एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस सुन रहे हैं आप। सताक्षी आपके साथ है और रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस में अभी ये वक्त है गानों की हैट्रिक की आज के लास्ट ट्रैक का। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

चलिए फिर इस आपस में जरा बात कर ली जाए अंडरस्टैंडिंग की और रिश्तों की मजबूती की भी। हम सोचते हैं कि सिर्फ प्यार का इजहार कर दिया तो रिश्ता मजबूत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी रिश्ते की मजबूती सिर्फ प्यार या इजहार से तय नहीं होती, बल्कि उस रिश्ते की असली गहराई अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि सामने वाले को उसके असली रूप में आप एक्सेप्ट कर ले, वो जैसा है उसे आप वैसा ही एक्सेप्ट कर ले, उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमजोरियों को भी आप अपना लें। क्योंकि प्यार अक्सर दिल से होता है, लेकिन समझ दिमाग और दिल दोनों से मिलकर बनती है। जब हम अपने पार्टनर की बात बिना टोके सुनते हैं, जब हम उनकी चुप्पी के पीछे छिपे दर्द को पहचान लेते हैं, जब हम उनके गुस्से के पीछे छुपी लाचारी को समझ लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप सामने वाले बंदे को समझते हैं, आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं, और यही एक रिश्ते की भी अंडरस्टैंडिंग है। सो रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब दोनों एक दूसरे की सोच, आदतें और हालात को समझने लगते हैं। तो भाई रिश्ता जो है, अगर आप वाकई स्ट्रांग चाहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए इस बात पे। आइए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ, एंड कहीं मत जाइएगा भाई, मॉर्निंग शो में सताक्षी आपके साथ है।

लाइफ में हम सबकी एक ऐसा मोड आता है जिसमें हमें अपनी शुरुआत फिर से करनी पड़ती है, आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो फिर से शुरुआत करना कभी भी इजी नहीं होता। ये किसी नई किताब के पहले पन्ने को खोलने जैसा नहीं होता, जहाँ सब कुछ साफ और हल्का हो। ये उन हाथों से शुरू करने जैसा होता है जिन पर पुराने जख्मों के निशान अभी भी मौजूद होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, आप टूटी हुई हालत में भी आगे बढ़ सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी फुली हील टू स्टार्ट अगेन, है ना। और फिर से शुरुआत करने का सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं वही कहानी जो आप झेल कर आए हैं वो दोबारा ना दोहराई जाए, वही गलतियां, वही लोग, वही दर्द आपको दोबारा ना मिले। इसलिए नेचुरली कॉशन लेना तो जरूरी हो जाता है और दिल भी काफी कॉन्शियस हो जाता है। आप जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, जल्दी खुल नहीं पाते, और यही डर, और ये डर गलत भी नहीं है। इसलिए इस डर के साथ आगे बढ़िए, मगर आगे बढ़िए जरूर, क्योंकि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। और सुनते रहिए ठापन सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आज संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया है ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला एक गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया हुआ है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इस नू तैयार किया। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भैया नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
2: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रजिस्ट्रेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जेड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार दे कुछ हिस्सों विच पहले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषां दे पलायन दा भी मतलब संबंध रखता हैगा, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नो अक्सर भीड़भाड़ वाले स्टिम्पशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
7: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

अब सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नेविया के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है, सब जानना है मुझे। लेकिन सबसे पहले ऑफकोर्स हेल्दी रिचुअल से शुरुआत होगी। हेल्दी रिचुअल वही जो आपको हेल्दी रखता है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम अपने प्रोग्राम के लिए अच्छे से रेडी होना चाहते हैं और ये हमें एकदम कामली सारी चीजें सोचने पे, डिसीजन लेने में मदद करता है। तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आइए ऐसे ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत आपको पता ही है एक अच्छे से गाने के साथ होती है। अच्छा सा गाना हम आपको सुनाने वाले हैं जो कि है तुम पे ही प्यार आ गया। जी हाँ, तुम पे ही प्यार आ गया, गिनी विद सनी 2। आप देख सकते हैं Amazon Prime पे और ये खूबसूरत सी मूवी का खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए। और फिर होगी और भी बहुत सारी गपशप।

जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें आजकल के जो क्रिएटिव लोग सोशल मीडिया पर हमें सुझाते हैं, मतलब जो सिखाते हैं और आइडिया देते हैं, वो आइडियाज हमें कोई भी बुक नहीं दे सकती। कितनी भी पढ़ाई कर लेंगे ना, कोई बुक हमें वो आइडियाज नहीं दे सकती। कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मेरे सामने एक मीम आता है और वो मीम इतना जबरदस्त था कि मुझे लगा मुझे मेरे लिसनर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। और इट डज मेक सेंस बना रहा था वो। तो वहां पर था कि कोई व्यक्ति जो है वो जाता है बैंक में और वो कहता है, कैन आई ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट? जी हाँ, तो सामने से बैंकर बोलता है, श्योर, विद हुम? तो सामने से वो बंदा बोलता है, आई एम नॉट पिकी, एनी वन रिच वुड डू। और सामने से बैंकर उसे देखते क्या वो क्या कहा आपने, जरा आप फिर से दोहराएंगे। वेल, आप खुद सोचिए कि बैंकर जो है वो पूछ रहा है कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है, किसके साथ खुलवाना है। तो सामने से बंदा बोल रहा है, आई एम नॉट पिकी, मतलब मैं पिकी नहीं हूँ, कोई भी रिच बंदा चलेगा उसके साथ मेरा ज्वाइंट अकाउंट खोल दीजिए, बस मेरे को पैसा आता रहेगा, मेरे को मजे आते रहेंगे, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। आज दिन तक हमें लगता था कि ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही खुलेगा, लेकिन आप अगर किसी रिच इंसान के साथ खुलवा लेते हो ज्वाइंट अकाउंट, जिसके साथ आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या बढ़िया बात हो जाएगी। ऑफ कोर्स इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अदर देन दैट कि अगर सच में कोई रिच बंदा जो है उसके आजू बाजू कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं हो, एंड ही इज लाइक, यू नो व्हाट, ले लो मेरा पैसा, ले लो तुम मेरे साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो, तभी हो सकता है ये पूरा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन सोचने में क्या है, मतलब इट कैन हैपन, इम्पॉसिबल इज ऑल्सो आई एम पॉसिबल, राइट? मतलब ज्वाइंट अकाउंट उसके साथ खुलवाओ जो ऑलरेडी रिच है, जिसके साथ खुद का पैसा शेयर करना पड़े उसके साथ खुलवा के क्या फायदा है ना। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज। जी हाँ, क्या है वो चीज? जी हाँ, वो है एक अच्छा शो जो कि आप देख सकते हो। जी हाँ, सो आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अगर फैन हो, जी हाँ, लॉर्ड ऑफ रिंग्स जो कि फिल्म सीरीज है जो कि बहुत पहले आई थी बैक इन 1999, 2000 और 2001 में। अगेन, अगर आप उस मूवी को आज देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये तब आई थी क्या? मतलब लग ही नहीं रहा। इतनी अच्छी मूवीज, वो भी इतने बढ़िया VFX के साथ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हॉबिट इज सच अ लेजेंडरी मूवी सीरीज दैट हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। जी हाँ, सो अगर आप लोग फैन हो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के, तो आप उसकी सीरीज भी देख सकते हो। जी हाँ, ऑफकोर्स सीरीज आपको कितना जो है वो प्रसन्न करेगी और कितना एंटरटेन करेगी, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टूगेदर। बट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर ही एक सीरीज भी बनी हुई है, रिंग ऑफ द फायर, और आप इसे Amazon Prime पे देख सकते हो। देखिएगा और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आप कुछ ही एपिसोड्स देख पाओगे, सारी नहीं देख पाओगे, और अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं यार, मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहां थी, ये कहां है, ये क्या चल रहा है, मतलब ये इतनी अच्छी है ही नहीं, चलिए आप स्टार्ट कीजिए, आप ट्रेलर देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपका मन कर रहा है देखने का, या आपको भी लगता है कि जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है वो लेजेंडरी है एंड नोबडी, लिटरली नोबडी कैन टच दैट। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत ही बड़ी है तो कॉरपोरेट हैक है एक जो आप अपना सकते हैं। जी हाँ, सो इन कॉरपोरेट सेक्टर इट्स अ हैक। इफ द प्रॉब्लम इज टू बिग, शेड्यूल अ मीटिंग एंड मेक इट एवरीवन्स प्रॉब्लम। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू इट। जी हाँ, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, करने में हल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी मीटिंग शेड्यूल करनी है और सबकी प्रॉब्लम बना देनी है। मतलब ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम क्यों रहे, सबकी प्रॉब्लम बना दो, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मेरे जितने भी कॉर्पोरेट मजदूर हैं, जो मेरे लिसनर्स हैं, वो तो इस बात को जानते होंगे कि मैं एकदम सही कह रही हूँ। क्यों सही कह रही हूँ ना। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hu unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
4: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
3: Acha, wo kya?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स की स्ट्रॉन्ग टाई।

0: और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, मुझे एक बात पता है कि अगर हम लोग स्मार्ट हैं तो हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, और अगर हम ओवर स्मार्ट हैं फिर हमें थोड़ा और ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी ओवर स्मार्ट बन चुके हैं और उससे वो हम कुछ गड़बड़ ना करें, इसलिए हमें और ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, बात तो समझ नहीं आई, पर चलो ठीक है, आगे बताओ। जी हाँ, आई नो थोड़ी सी आजू बाजू और इधर उधर वाली बात थी, बट कहने का मतलब ये है कि एक किस्सा जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ वक्त पहले बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, और ये स्टोरी है एक बंदे की जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए थे। बहुत सारे चार्जेस मतलब इतने सारे चार्जेस कि गिन गिन कर इंसान जो है वो गिनती खत्म कर देगा, लेकिन उसके चार्जेस खत्म नहीं होंगे। जी हाँ, तो यहां पर उस बंदे को ढूंढते ढूंढते पुलिस जो है वो परेशान हो गई थी, और पुलिस ने फाइनली जो है वो 48 आवर्स तक उसे चेस किया, और फिर उसके बाद गेस कीजिए उस बंदे को कहां पकड़ा गया। जी हाँ, आप गेस तो कीजिए, उस बंदे को पकड़ा गया एक छत पर, मतलब एक शेड की छत पर। जी हाँ, वो बंदा किसी के घर के शेड की छत पर छुपा हुआ था, और वहां पर छुपा नहीं हुआ था, एक्चुअली वो सो गया था। अब कोई 48 घंटे तक भागता रहेगा तो फिर वो थकेगा भी, और थकेगा तो वो सो भी जाएगा। तो वो बंदा सोया हुआ था, और तभी पुलिस वाले वहां आते हैं। उन्हें पता था कि ये बंदा जो है यहां छुपा हुआ है इस शेड के ऊपर, वो सो गया है। वो सीढ़ी रखते हैं और बड़े ही अच्छे से चढ़ते हैं और उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक वो बंदा होश में आता, उसे लग रहा था वो सपना देख रहा है, और वो होश में आ ही नहीं पाया जब तक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और फिर उसके बाद पुलिस उससे हाथापाई करने लग पड़ी। लिटरली उसने पुलिस को काफी परेशान किया उस वाली सिचुएशन के दौरान भी, और फिर पुलिस वाला उसको लेकर नीचे गिर गया, और फिर उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। मतलब अगर आप वो वीडियो देखते जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रही हूं, तो आप लोग बोलते हैं इतनी सारी मैन पावर, इतनी सारी पुलिस सिर्फ एक बंदे के लिए। वेल ये बंदा जो है वो बहुत ही खतरनाक था। जी हाँ, और यहां पर ये 37 साल का जो बंदा था, 37 ईयर ओल्ड मैन, इसको अरेस्ट किया गया, और इस पे सस्पिशन था ऑफ कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल डैमेज, पब्लिक ऑर्डर ऑफेंसेस, बल्गरी एंड असॉल्टिंग टू पुलिस ऑफिसर। मतलब इतने सारे चार्जेस, मैंने कहा ना गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चार्जेस खत्म नहीं होंगे। और बंदा पकड़ा भी कहां गया, बेचारा नींद से हार गया, ऐसे तो पकड़ा नहीं जाता। ये इसने पूरी कोशिश की थी कि आज तो मैं नहीं आऊंगा पुलिस के हाथ, बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर इंडियन पुलिस होती फिर तो डेफिनेटली नहीं पकड़ पाती, पर चलो ये अमेरिकन पुलिस थी। और यहां पर फंसा भी कहां, तो नींद में। मुझे पता है कि जिन लोगों की नींद खतरनाक होती है ना, वो उसी के चक्कर में फंसते हैं। इसीलिए मैं जिसकी भी नींद खतरनाक है सबको बोलना चाहूंगी कि इतनी खतरनाक नींद नहीं होनी चाहिए। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है, वेल ऑफकोर्स, क्योंकि मेरी भी नींद खतरनाक है, और मुझे भी अलार्म नहीं सुनाई देते थे कुछ वक्त पहले तक, और ऐसे में मुझे भी ऐसे पकड़ के ले जाते लोग और मुझे भी नहीं पता चलता। बट द थिंग इज कि अब मुझे फाइनली अलार्म सुनते हैं और सब कुछ ठीक है, मेरी नींद इतनी खराब नहीं है अब। लेकिन जिसकी भी है, संभल जाओ, सुधर जाओ। आपको पता ही नहीं चल रहा आजू बाजू कौन आपके बाजू आके बैठ गया, तो वो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है। जी हाँ, लेकिन ये बंदे को पकड़ लिया गया, पुलिस को थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ गई, वो बात अलग है, बट पकड़ जरूर लिया उन्होंने। जी हाँ,
2: आपने आंखें खोली है, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: जी दोस्तों, इसी के साथ स्काई डाइविंग करने का शौक आप में से कौन कौन रखता है, फ्री फॉल का शौक आप में से कौन कौन रखता है? जी हाँ, सोचिए सोचिए बताइए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी बकेट लिस्ट में फ्री फॉल को रखा हुआ है कि कोई तो दिन आएगा जब आप भी फ्री फॉल करोगे, स्काई डाइव करोगे और मजेदार तरीके से ऊपर से छलांग मारोगे और पैराशूट की मदद से फिर आप नीचे कदम रखोगे। वेल, आपने सोचा होगा क्योंकि मैंने भी सोचा है और वैसे बहुत सारे लोगों ने सोचा, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया और शायद मोस्ट प्रोबेबली आपने भी कर लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है और जिन लोगों ने अभी करना है और जिन लोगों ने इनफैक्ट कर भी लिया, आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ा फ्री फॉल आज दिन तक किसने किया, क्या आप गेस कर सकते हो कितना ऊंचा फ्री फॉल कोई कर सकता है? गेस कीजिए। हाँ, जी हाँ, सोचिए। वेल 2012 यानी कि 2012 में फेलिक्स बॉमगार्टनर, जो कि इस रिकॉर्ड के मालिक है और इस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड जिनके नाम है वो है फेलिक्स बॉमगार्टनर, जो कि लिटरली खड़े थे ऑन द एज ऑफ स्पेस। जी हां, आपने सही सुना, 39 किलोमीटर अबव अर्थ, और वहां से वो नीचे को जाते हैं। जी हाँ, नीचे को जाते हैं, वो फ्री फॉल करते हैं और 1357 किलोमीटर पर आर की फ्री फॉल स्पीड से वो नीचे आते हैं। फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, नो प्लेन, नो इंजन, कुछ नहीं, वो वैसे ही नीचे उतरते हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल भी है? वेल, ये बंदे ने रियल में किया है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि फेलिक्स बॉमगार्टनर ने ये काम करके दिखाया था, और जैसे मैंने कहा कि फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड का रिकॉर्ड जो है यहां पर तोड़ दिया था। जस्ट अ ह्यूमन बॉडी डिफाइंग एवरीथिंग साइंस सेड वॉज इम्पॉसिबल। जी हाँ, ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू ब्रेक द साउंड बैरियर विद हिज बॉडी अलोन। जी हाँ, और उसके बाद नासा ने यूज किया हिज डाटा, उनका डाटा, टू बिल्ड सेफर सिस्टम फॉर फ्यूचर स्पेस। जी हाँ, वन जंप चेंज्ड साइंस फॉरएवर। जी हाँ, अगर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने ये नहीं किया होता तो शायद हमें नहीं पता होता कि कैसे ये चीजें पॉसिबल है, और शायद आगे के स्पेस मिशंस में जितनी हमने तरक्की की है वो भी हम नहीं कर पाते। लेकिन फ्री फॉल सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर या प्लेन से नहीं होता है, फ्री फॉल स्पेस से भी होता है, ये बंदे ने प्रूव कर दिखाया था। कैन यू इवन इमेजिन दैट? अगर आपने इसकी वीडियो देखी नहीं है तो आप वो भी देख सकते हैं, शायद आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट मिले। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: Take it away!

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मेरे सामने एक मीम आता है और उसको देख के मुझे पक्का पता चल जाता है कि घर वाले सही कहते थे, हमारी सारी क्वेश्चंस का आंसर हमारी किताबों में, मतलब हमारी सारी जिंदगी के प्रश्नों का आंसर हमारी किताबों में, लेकिन हमने अपनी किताबों को वैसे पढ़ा ही नहीं जैसे जेंजीज उन्हें पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि म्यूजियम में क्रिएटिविटी नहीं है, सोशल मीडिया पर है, और जेंजी लोगों का दिमाग ऐसी जगह दौड़ता है जहां मिलेनियल्स या उनसे पहले के लोगों का दौड़ ही नहीं सकता। जी हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि वो मीम मेरे सामने आता है, उसमें लिखा था कि मॉम सेड नो, डैड सेड नो, I did it anyway because two negative make a positive and ask my maths teacher. जी हाँ, ध्यान से सुनिए। Mom said no, dad said no, I did it anyway because two negatives make a positive, ask my maths teacher. भाई बात तो सही है। भाई बंदा सोच रहा होगा कि पूछता हूँ अपने पापा को, तो पापा ने भी चीज करने से मना कर दिया, मम्मी ने भी चीज करने से मना कर दिया, लेकिन जब दोनों ने मना कर दिया तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव बनाते हैं। ये हमारी मैथ्स टीचर ने हमें सिखाया था बचपन में, लेकिन जेंजी से पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि इसको अपनी जिंदगी के बाकी वाकियों में भी यूज किया जा सकता है। वेल, जेंजीज ने हमें ये भी सिखा दिया। सो जेंजीज आर नॉट बैड, मैं कहूंगी सच में, मतलब वो हमें अलूफ रहना सिखा रहे हैं, वो हमें ये भी सिखा रहे हैं कि अगर ज्यादा कोई आपके दिमाग पे चढ़ाई करता है तो उसको वहीं से भगा दो और सुनो ही मत उसकी बात। और जेंजीज ने हमें ये भी बता दिया कि अगर दोनों पेरेंट किसी चीज को करने के लिए मना कर रहे हैं तो मतलब फिर वो कर लेनी है, क्योंकि टू नेगेटिव मेक वन पॉजिटिव। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा आजकल तुम्हारा प्रोग्राम हमारे बच्चे ना ही सुने तो ठीक रहेगा, क्योंकि तुम उनको गड़बड़ सलाह दे रही हो। अरे नहीं नहीं, ये तो सब फन है, आपको तो पता ही है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. जी दोस्तों, और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने सोचा है कि हमारे सूरज पर क्या होता है? मतलब हमारा सूरज हमें इतनी गर्मी देता है, इतनी एनर्जी देता है, तो आपको क्या लगता है वहां पे क्या होता होगा? आपको लग रहा होगा, और मुझे जो बेसिकली लगता था कि वहां पर आग खोलती होगी, लावा की तरह जो है वॉल्केनिक जो है सिचुएशन वहां पे होती होगी, यू नो, या फिर आग के जो है सोल्स जो है वो देखने को मिलते होंगे. या मुझे आज दिन तक ऐसा ही लगता था जब तक मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी, वो क्लियर वीडियो जिसमें कि सन के सरफेस को सबसे ज्यादा क्लैरिटी से कैप्चर किया गया है. सो एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है वो कैप्चर कर लिया है द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज येट ऑफ द सन्स विजिबल सरफेस. जी हाँ, आपने सही सुना, जो अभी तक की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली जो फुटेज है वो एस्ट्रोनॉमर्स ने ले ली है, और इसमें रिवील कर रहे हैं टाइनी स्वर्लिंग वॉर्टेक्स लाइक पैटर्न्स. जी हाँ, मतलब जो हमें लग रहा था अभी तक वो वैसा था ही नहीं, वहां पे प्लाज्मा है और वो प्लाज्मा जो है वो धधक रहा है. जी हाँ, धधक रहा से मेरा मतलब वो अजीब सी सिचुएशन हो रही है, इट्स ऑल गैसेस एंड इट्स ऑल प्लाज्मा. जी हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई आग जो है वाली सिचुएशन है, कोई वॉल्केनिक जो है सिचुएशन है वहां पे, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल गैसेस एंड इट्स ऑल ऑल ऑल प्लाज्मा. जी हाँ, सो फुटेज जो है वो शो करती है कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग वर्ल्ड्स ऑफ हॉट प्लाज्मा, लार्ज ऑन ह्यूमन स्केल बट स्मॉल ऑन द स्केल ऑफ स्टेलर सर्फेस. मतलब जितने बड़े वो प्लाज्मा के जो वर्ल्ड्स जो है, वो हॉट प्लाज्मा के जो वर्ल्ड्स वहां पर बन रहे हैं, अगर आप उनको देखोगे और अगर आप उनको नापने की कोशिश करोगे कि वो कितने बड़े हैं, तो वो ह्यूमन लेवल पे तो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि उसके हिसाब से जो है वो एक एक वर्ल्ड जो है वो 12 माइल्स का है. मतलब जो सबसे छोटा है वो 1919 किलोमीटर के हैं, जो मीडियम है वो 100 माइल्स यानी कि 170 किलोमीटर के हैं. मतलब आप खुद सोच सकते हो कि ये जो प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा के जो वर्ल्ड्स हैं वो इतने खतरनाक है और इतने बड़े बड़े हैं. जी हाँ, सो ये डिस्कवरी जो है वो की है यूएस नेशनल साइंसेस फाउंडेशन हवाई के बेस्ड डैनियल के ने, और उन्होंने अपनी सोलर टेलीस्कोप से इसे देखा है, और उन्होंने इसे अपनी सोलर टेलीस्कोप से इसे कैप्चर किया है, और रिसर्चर्स को अब बहुत सारा डाटा मिल गया. मतलब अभी तक जो हमारे पास सूरज का जो सर्फेस था, यानी कि सन का जो सर्फेस था, वो इतना क्लियर डाटा था ही नहीं, लेकिन अब हमारे पास है. जी हाँ, नाउ वी नो कि मतलब वो जो एक एक प्लाज्मा है, एक एक हॉट प्लाज्मा का जो वॉल है, उसका जो डायामीटर है वो कितना बड़ा है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 1919 किलोमीटर एंड 170 किलोमीटर. मतलब आप खुद सोचिए, सूरज इतना बड़ा है तो ऑफकोर्स वहां की छोटी छोटी चीज भी एटलीस्ट बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा किलोमीटर में होगी, राइट? यही हुआ. लेकिन जो मुझे लगता था, जो बहुत सारे लोगों को लगता था, वो है ही नहीं. इट्स ऑल गैसेज, इट्स ऑल हॉट प्लाज्मा, दैट्स इट. और जब आप इसे देखोगे, इस वीडियो को, तो आपको दिखेगा वो मूव हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब जैसे कोई अजीब सी चीज चल रही है. जब आप प्लाज्मा को डिटेक्ट करते हो, जब आप रिसर्च करते हो प्लाज्मा पे, मतलब लैब में जाके, तो जैसे प्लाज्मा आगे पीछे हो रहा होता है एक दूसरे से, मतलब आगे को जा रहा है या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को चेंज कर रहा होता है, वैसा ही सिचुएशन है यहां पर भी ऑन सन. इमेजिन. और यही जो है वो एनर्जी क्रिएट करता है, वो बाउंडलेस एनर्जी, मतलब जो कभी ना खत्म होने वाली जो एनर्जी होती है सूरज में, वो ऐसे ही चलती रहेगी हमेशा. और ऐसे ही हमें सोलर सिस्टम जो है वो लिटरल द मोस्ट यू नो रियल एंड क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, लेकिन हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा.

दोस्तों, कुछ गानों की मेलेडी इतनी खूबसूरत होती है कि आप अगर एक बार उस गाने को सुन लो, एक बार उस धुन को सुन लो, वो हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाती है, आपके दिल में घर कर जाती है। एंड आई थिंक दिस इज द सॉन्ग जो कि ऐसा आपको फील करवा सकता है। मतलब क्या खूबसूरत धुन थी, राइट? मतलब कॉम्पोजिशन की बात करो, गायकी जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी फॉर श्योर, लिरिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारे थे, बट आई हैव टू से जो धुन थी ना, क्या बात है, खूबसूरत आते ही खूबसूरत है। जी हाँ, सो यहाँ पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। आप वापसी होगी कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आई होप आपने हमारे आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, नीले नीले अंबर में। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, मैं गाऊंगी नहीं। बाय, सी यू, टाटा।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन लायंस के कोच क्रिस फैगन ने दिया इस्तीफा। जी हां, ब्रिस्बेन से आज की सबसे बड़ी खेल खबर। ब्रिस्बेन लायंस को लगातार तीसरी बार AFL चैंपियन बनाने के बाद हेड कोच क्रिस फैगन ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की वर्ल्ड रैंकिंग में सुधार। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिस्बेन के लिए बड़ी उपलब्धि। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में छलांग लगाते हुए 73rd स्थान हासिल किया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस का काम चालू। जी हां, अगर आप इस हफ्ते ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले हैं तो ध्यान दें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने रेगुलर मेंटेनेंस वर्क की जानकारी दी है। यात्रा पर निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का समय जरूर चेक कर लें। इसी के साथ इंडिजिनस बिजनेस मंथ की ब्रिस्बेन में शुरुआत। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही क्वींसलैंड में इंडिजिनस बिजनेस मंथ की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिस्बेन में लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये महीने कई प्रदर्शनी और नेटवर्किंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। वहीं ब्रिस्बेन में अक्टूबर का सुहाना मौसम। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही ब्रिस्बेन में मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन का तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच रहा। वहीं हल्की धूप और हल्की हवा के साथ बाहर घूमने के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन था। वहीं क्वींसलैंड सरकार का नया क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। क्वींसलैंड राज्य सरकार ने ब्रिस्बेन और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए विंड फार्म प्रोजेक्ट की आखिरी टर्बाइन स्थापित कर दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का परचम लहरा रहा है। आज भारत की कुल मेडल गिनती बढ़कर 62 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें शूटिंग और आर्चरी में भारतीय खिलाड़ियों ने सोने के तमगे जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं डिजिटल इंडिया की बड़ी छलांग। एप्पल पे लॉन्च आईफोन और एप्पल वॉच यूजर्स के लिए आज बड़ी खबर है। भारत में एप्पल ने अपनी पेमेंट सर्विस एप्पल पे आधिकारिक तौर पर लागू कर दी है। वहीं वोटर आईडी फॉर्म बदलने पर चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में होने वाले कुछ तकनीकी बदलावों में बड़ा कदम उठाया है। राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद आयोग ने साफ किया है कि जिन राज्यों में वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है वहां कोई नया बदलाव लागू नहीं होगा। वहीं IIT मद्रास और बिट्स पिलानी के बीच बड़ा समझौता। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश के दो बड़े संस्थानों IIT मद्रास और बिट्स पिलानी ने 5 साल के लिए एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। वहीं मिजोरम में भारी बारिश के बाद ट्रेन रूट में बदलाव। मिजोरम के बैराबी सेरांग रेल मार्ग पर भारी बारिश के कारण पटरियों पर पानी और मलबे का जमाव हो गया है। रेल विभाग ने सुरक्षा के तौर पर 4 ट्रेनों का रूट छोटा किया है। इसी के साथ अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले एयरलाइन क्रू की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला। जी हां, दुबई से आ रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट में क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। कॉकपिट में इमरजेंसी के बावजूद पायलट और क्रू ने सुरक्षित लैंडिंग कराई। दुनिया भर में इस भारतीय पायलट के साहस की तारीफ हो रही है। वहीं गूगल ने नए AI मॉडल पर सुरक्षा बढ़ाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गूगल ने अपने नए AI मॉडल को आम जनता के लिए रिलीज करने से पहले सरकारी सुरक्षा जांच के लिए भेजा है। कंपनी का कहना है कि सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही इसे मार्केट में उतारा जाएगा। वहीं दुनिया भर में मनाया जा रहा वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। जी हां, आज 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जा रहा है। सेहतमंद जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और शाकाहारी भोजन के फायदों को लेकर आज दुनिया भर में कई तरह के इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सिंगापुर ने युवाओं के लिए शुरू की नई पहल। घटती जन्मदर और शादी की कम होती दरों से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष ऑफिशियल नेटवर्किंग ऐप लॉन्च किया है ताकि वे अपना सही जीवन साथी चुन सके। इसके साथ अमेरिका ने सीनियर मिलिट्री पदों में 20% कटौती का किया ऐलान। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने आज एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इसके तहत सेना के बड़े अधिकारियों की संख्या में 20% तक की कटौती की जाएगी और ध्यान टेक्नोलॉजी व रोबोटिक्स पर ज्यादा दिया जाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों पर चर्चा। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच एक व्यापारिक समझौतों पर बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के नेताओं का कहना है कि वे व्यापार और सीमा सुरक्षा को आसान बनाने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स, भारत को शूटिंग और आर्चरी में गोल्ड। एशियन गेम्स के 13वें दिन भारत की मिक्स शूटिंग और तीरंदाजी टीमों में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वहीं रोनाल्डो ने नेशनल फुटबॉल कैंप से लिया ब्रेक। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नेशंस लीग कैंप से अस्थायी रूप से ब्रेक ले लिया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी आगे की योजनाओं के बारे में सही समय आने पर फैंस के साथ जानकारी साझा करेंगे। वहीं एशियन गेम्स मेडल तालिका में चीन का दबदबा कायम। एशियन गेम्स 2026 की मेडल टेबल में चीन 150 से ज्यादा गोल्ड मेडल के साथ अपने पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां शुरू। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले साल होने वाले पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआती तैयारियों को जायजा लिया है। इसी के साथ टेनिस में नए खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों ने इस हफ्ते अपनी चमक दिखाई है। दिग्गजों को हराकर नए चेहरे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, जिससे कोर्ट पर रोमांच काफी बढ़ गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी हाँ तुसी बड़े हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी अच्छे संदेश अलग दे नाल बन चुके हो ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है तुसीं की कहना है तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो बिस्वानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते बिस्वानी bisswani.com साडी ईमेल आईडी है जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾਓ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਓ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਭੇਜੋ ਯਾ ਕਰੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਜੁੜੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੋ

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। अगली जेड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान दी। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, ए कहा जांदा है ते कहा जांदा है कि कहानी किते ना किते उसकी है। मन्या जांदा है कि ए कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाण वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। ए गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नू बयां करता है। इस औरत नू तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता, कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्या जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना जदो लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उथों ही तो कहानी शुरू हुई सी। दसदी उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक गीत।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती है। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जेड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार दे कुछ हिस्सों विच पहले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषां दे पलायन दा भी मतलब संबंध रखता हैगा, जो 19वीं सदी दे विच ना एगलो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नो अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
2: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

की से जो पर सो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर।

The number is 0411270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेंबर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

सबने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

ना बदला मैं, ना बदला।

0: 보관.
1: 말해요.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

0: प्रिय श्रोतागण, आज 3 अक्टूबर सन 2026 है और सुबह का बेला में आप सबका मैं परमानंद तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। एक बार फिर आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में सर्वप्रथम मौसम का खबर आपको बतलाते हैं। आज के मौसम के खबरों ने जो हमें दिए हैं जानकारी, उसके अनुसार मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने अनुमान किए हैं कि आज ज्यादातर ब्रिस्बेन में धूप निकलेगी, दिन में 26 रहेगा, रात्रि को 14, हवा की रफ्तार 15 और 5:25 पर सूर्य उदय हुआ है और 5:50 पर सूर्यास्त होगा। इप्सुच में ज्यादा आकाश पर घटा छाई रहेगी, 27 दिन में, रात्रि को 14, हवा की रफ्तार 13 और सनसाइन के उसमें इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 23 दिन में, रात्रि को 17, हवा की रफ्तार 13 और गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही रहेगा, 24 दिन में, रात्रि को 16, हवा की रफ्तार 13। आपको निंडी ले चलते हैं फिजी द्वीप, जहां पर 5:50 पर सूर्य उदय हुआ है, 6:08 पर सूर्यास्त होगा और इस समय हल्की बारिश हो रही है निंडी में, 27 दिन में, रात्रि को 23, हवा की रफ्तार 10 और लंबा समय आकाश पर घटा छाई हुई है, 28 दिन में, रात्रि को 23, हवा की रफ्तार 21 और सुबह में हल्की बारिश के साथ साथ 25 दिन में, रात्रि को 23, हवा की रफ्तार 21। वेलिंगटन में बारिश हो रही है, यहाँ 11 दिन में, रात्रि को 7:37 विंड स्पीड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हल्की बारिश हो रही है, 17 दिन में, रात्रि को 11, हवा की रफ्तार 19, 6:55 पर सूर्य उदय हुआ है, 7:50 पर सूर्यास्त होगा। मुंबई में वेरी हॉट, 37 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 14 विंड स्पीड। एंड अमृतसर 34 मैक्सिमम, 23 विंड नाइट, 6 विंड स्पीड। इन न्यू दिल्ली सिमिलर सनी, 35 मैक्स, 24 मिनिमम, 13 विंड स्पीड। 6:15 सूर्य उदय होगा, 6:05 पर सूर्यास्त होगा। दोस्तों, आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि आज मैं 15 पहले समाप्त करूंगा प्रोग्राम को, यानी कि 8:15 आपसे आज्ञा लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं। और फिलहाल आपका स्वागत करते हुए, हमारा स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और मेरा मोबाइल नंबर है 04111270035। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही, और आज का जो पहला गीत है उसे आपको सुनवाते हैं। और पहला गीत बहुत प्यारा सा गीत है दोस्तों, और इस गीत में आवाज जो है आपको बतला दें, सोनू निगम जी हैं श्रेया घोषाल जी के साथ, और गीत बहुत प्यारा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब सुबह उठते हैं बहुत कुछ सोचते रहते हैं अंदर अंदर, और किसी ना किसी का तारीफ करते हैं, बयां करते हैं, और कैसे करते हैं शायद कुछ आपको जानकारी गीत के द्वारा मिल जाए। तो चलो आगे बढ़े, सुने इस गीत को।
1: सिर्फ दोगे पहनाओगे नहीं,

0: जी मित्रों, कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं टाइटल सॉन्ग था ये फिल्म क्रिश का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान आप सुन रहे हैं, जहाँ आप इस समय 5:50 जिन्हें 6:50 होने 6:40 होना चाहते हैं। क्या बात है, मैं आगे भाग रहा हूँ समय के साथ साथ, क्या हो रहा है। चलो विज्ञापन के साथ बढ़े आगे।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: मित्रों 18 रह गए हैं इस समय 7 में, और आगे बढ़ते हुए एक और टाइटल सॉन्ग है, इस बार फिल्म कुछ कुछ होता है का, जिसे अलका याग्निक जी और उदित नारायण साहब आपको सुनाएंगे।

0: जी मित्रों, क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है। अभी आप सुन रहे थे, चले विज्ञापन की तरफ भी ध्यान देते चले हम, और अगला खबर सुनिए।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: और मित्रों, अगला गीत में सुर प्रदान कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खान साहब, उदित नारायण जी और अनुराधा पोटवाल। बहुत ही प्यारा सा फिल्म और प्यार हो गया, जिसको ज्यादातर फिल्म आने के कार्य जो था वो सिंगापुर में हुआ था। तो चलें आनंद लें इसका, गीत का।

0: जी मित्र हुआ और प्यार हो गया का बहुत ही लोकप्रिय गीत अभी आप सुन रहे थे और उम्मीद कर रहा हूं कि गीत आपको बेहद पसंद आया होगा। आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम प्रोग्राम को सुन रहे हैं।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: और दोस्तों हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए चलें। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। कौन अदा कर रहा है? उदित साहब हैं जी।

0: जी मित्रों, इसी मुस्कान के साथ हम यहाँ पर ये मिले जुले जो हिट्स ऑफ 90s और 2000 छोड़ रहे हैं और आगे चलेंगे हम। आगे चलते हुए अब एक विज्ञापन बजा देता हूँ, विज्ञापन के बाद हम पुराने गीतों की दुनिया में आपको लेकर चलेंगे।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: मित्रों, आपका मैं परमानंद हृदय से स्वागत कर रहा हूँ संगीत सरगम प्रोग्राम में। लगभग 7 बजने वाले हैं। अब समय आया है नए गीतों के साथ खत्म हुआ पुराने गीतों के कार्यक्रम का, और इस प्रोग्राम में आपका मैं हृदय से स्वागत करते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और केम छो भेंट कर रहा हूँ। आज शनिवार है, मौसम बहुत खूबसूरत है और सोमवार को छुट्टी है, तो जो लोग ब्रिस्बेन में घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं या हमारे स्टेट में आए हुए हैं कहीं भी, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब तक आप यहाँ पर समय हमारे साथ बिता रहे हैं, आपका अच्छी तरह से ये समय बीते और कुछ बेहतरीन यादों को लेकर आप वापस घर जाएं। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। लता जी का साथ है इस समय, फिल्म का नाम है प्रिंस और पर्दे पर शमी कपूर जी और वैजयंती माला। तो सुनिए जी, ठंड है उतना तो ठंड नहीं लेकिन है, मगर गीत कुछ और कहता है।

जय मित्र, हाय रे दीवानी, हाय रे जवानी, दिल ले जाए। क्या बात है भाई, ठंडी ठंडी हवा में दिल उड़ जाए, ठंडी ठंडी हवा में, क्या बात है। तो आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी और पुराने गीतों का कार्यक्रम में। अब अगला जो गीत है उसे मैं आपके लिए बजाने जा रहा हूं, और इस बार साथ है मोहम्मद रफ़ी जी का। फिल्म का नाम है प्रोफेसर, और एक बार फिर शमी कपूर जी कामनी जी के सामने हैं मुख्य भूमिका में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक बजाए हुए गीत पसंद आ रहे होंगे, और आगे चलें, सुनते हैं कैसा ये गीत है।

0: मुश्किल। जय मित्रों, फिल्म प्रोफेसर का 1962 में रिलीज की गई मूवी का ये गीत था और अच्छा लगा, आपको भी ठीक लगा होगा। तो चलें प्रिंस ज्वेलर्स का खबर सुने।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: प्रिय श्रोतागण, 7:10 हो रहे हैं और पुराने गीतों का लुफ्त आप ले रहे हैं। अगला गीत है ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, मयूर सोनी जी के संगीत पर। प्यारा सा गीत।

0: जय मित्रों, माहिर सोनी जी के संगीत पर ये बहुत ही लोकप्रिय गीत है, दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। कभी कभी होता है ना, दिल से हम सवाल करते हैं कि काओ कहाँ है, किसकी याद में इतने रात भर रुलाया, रात भर तड़पाया, बहुत कुछ सुनाया और यादें दिलाई। तो ऐसे ऐसे गीत कभी काल आ जाते हैं याद, तो हम सोचे कि चलो भाई आपके लिए बजा देते हैं। और खुशी की बात है कि समय पर 7:15 बजे हैं, और साथ किसका, राव जी का। नमस्कार राव जी, स्वागत है रेडियो ब्रिज वाणी पर।
1: नमस्कार, नमस्कार परमानंद जी। आपका सिलेक्शन मैं सुन रहा था
0: जी,
1: बहुत बढ़िया। कैसे आपके दिल में आया कि हम ऐसा सिलेक्शन करें?
0: मालूम नहीं राव जी, देखो समय के साथ साथ ना, और मौसम के साथ साथ आहिस्ते आहिस्ते सब में बदलाव आता है, और कभी काल जब हम बैठकर कुछ जिसको इसको जब निर्माण करते हैं इसे म्यूजिक का, और या प्रोडक्शन करते हैं, तब ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, बहुत लोगों के चेहरा सामने आ जाता है।
1: अच्छा,
0: और माहौल कैसा है, कौन सुन रहा है, देश विदेश में कहाँ सुन रहे हैं, तब उसी प्रकार से मालिक कहता नहीं ये नहीं ये बजाना, ये नहीं ये बजाना, तो ये हुआ है बस।
1: अच्छा, आखिरी गीत अभी आप मैं सुन रहा था, अरे दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है। देखिए, गीतों को तो आप बजाते हो और सुनने वाला और फिर गुनगुनाने वाला किस प्रकार के लेता है ना
0: जी।
1: यूं ही हम सुन करके चले जाते हैं, गुनते नहीं है तो हमको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे भोजन को आप खूब चबा करके और उसका स्वादिष्ट लें, वो अलग होता है, और फटाफट ही आप निगलते चले जाओगे, आपको कुछ मालूम नहीं होगा। इसी प्रकार गीत का बोल है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ऐ दिल मुझे बता दे। दिल तो बताता है और दिमाग उसको पकड़ता है और फिर उसको गूंढता है। तो इसी पर एक समय की बात है कि भाई ने तिलक लेकर के आए थे, तो उस तिलक में मैं भाग लिया और मेरे को कुछ कहने के लिए मौका मिला। तो मैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहा था, उल्लेखनी मैं कहीं रख दिया था, अचानक वो उसको प्राप्त किया और उसका बोल ऐसा था कि कन्या का भ्राता तिलक लाया, सभी की निगाह सुनहरे वस्त्र में लटके थाली पर पड़ी। क्या क्या होंगे उस थाली में, सभी यह अनुमान लगा रहे थे। इरकारू को देखकर लगता था शायद बहुत सारा नगद धन होगा। इतने में कन्या का भाई बोल उठा कि थाली को देखकर संशय त्याग दो भाई, इस थाली में मेरी बहन की ही नहीं अपितु जिन सखी सहेलियों के साथ खेली है उसकी सिसकियों में छुपा उनका प्यार बंधा हुआ था। जिस माता की गोद में पली बड़ी हुई, उस माँ के रोते हुए कलेजे के टुकड़ों में छुपा उनका दुलार बंधा हुआ था। जिस पिता के कंधों पर चढ़कर दुनिया देखी, उस पिता के सोने पर रखे पत्थर में दबा उनका लाड प्यार बंधा हुआ था। जिस भाई के सानिध्य में निश्चिंत तो होकर खेली, उस बिलक से भाई के आंसुओं में छुपा उनका प्यार बंधा हुआ है। जिन पड़ोसियों के आरक्षण में बचपन गुजारा, उन पड़ोसियों के वेदना में छुपा उनका गौरव और सम्मान बंधा हुआ था। बहन कहती है भाई से कि हे भ्राता, श्री कह देना अपने बहनों से कि जिस थाली को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, उस थाली में मेरी बहन की कुल की मर्यादा के साथ उसका संसार बंधा हुआ है। इस कविता को मैं न जाने कहाँ रख दिया था, अचानक मेरे को याद आया कि चलें खोजें कुछ आज के आपके संगीत सरगम के लिए लाऊं, तो अचानक ये कविता मेरे को हाथ लगा, तो मैंने शेयर किया परमानंद जी संगीत सरगम के लिए। और संगीत सरगम जब मैं उस शब्द को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम संगीत सरगम का अर्थ क्या ही होता है, तो खोजना शुरू कर देता हूँ मैं अपने में खो जाता हूँ। इसलिए परमानंद जी आपकी जो गीतों का सिलेक्शन है ये लाजवाब है। तो आज इसलिए इतना ही, अगले शनिवार को देखिए क्या लेकर आऊंगा।
0: जी, जाने से पहले राव जी एक बात कहना बहुत उचित समझता हूँ इस समय, कि जो लेख आप लेकर आए थे, जो आपने खुद ही रचे हैं, वो रचना जो है वो इतना इसमें बड़े बड़े शब्द हैं जिसके माने या मतलब या मीनिंग निकालना जो मनुष्य के ऊपर जाता है या अपना प्यार को दर्शाता है, अनुभव करने की बात, ये बड़ा मुश्किल है। और ये जो पंथे आपने कहकर चले गए हैं ये तो 2-3 घंटे की बात है, अगर इसका अर्थ निकालें हम एक एक शब्द का जो वाणी में आया है, और जिस तरह से उन्होंने अपने भानोई या जीजा जी के सामने पेश किए हैं थाली भरकर, वो बहुत बहुत, क्या मैं बोलूँ, कोई कीमत ही नहीं है उसका। लेकिन बहुत बड़े बात आप कहकर चले गए। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे श्रोतागण इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जरूर इसके इस विषय का चर्चा करेंगे, और अपनी बहन के प्रति बहुत सारा प्यार गांठ में बांध कर रखेंगे, उन पर निछावर करेंगे, और हमेशा कोई भी दुख तकलीफ ना आए वो ध्यान में रखकर मान सम्मान के साथ अपने जीजा और पूरे परिवार का यहाँ पर बहुत सत्कार करेंगे, और हमेशा ऐसे करेंगे कि किसी भी परिवार में किसी भी तरह का रिश्ते में दरार ना पैदा हो। तो राव जी, मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ आपको, ये मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो चलो अगले शनिवार को देखते हैं आप क्या लेकर आते हैं। नमस्कार जी, चले गए। अच्छा, धन्यवाद जी। तो मित्रों, ये थे राव जी जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं 7:15 के आसपास, और आज का विषय तो भाई दिल को हिला कर रख दिया। तो चलो विज्ञापन सुनते फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644351। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: अप्रिय श्रोतागण, आपको याद दिला दें कि आज मैं सवा घंटा कम प्रोग्राम करूंगा, तो रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम हम लगभग 7:45 बजे आपके लिए लेकर पेश करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आसमां के नीचे हम आप अपने पीछे, क्या बात है, देवानंद जी वैजयंती माला जी के सामने, और ये है बहुत ही खूबसूरत सा दो गाना जो मैं आपके लिए बजाने जा रहा हूँ। जीवल थीफ फिल्म का नाम है और अदा कौन कर रहे हैं, किशोर दा लता जी के साथ।

मित्रों, इस गीत के साथ साथ 7:30 बज गए हमारे स्टूडियो की घड़ी में और आप संगीत सरगम प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और अब समय हुआ जन्मदिन के खबरों का। जिन लोगों का जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें हम याद कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनकी शादी की सालगिरह है बहुत ही अच्छी तरह से बीते। और अगर आप किसी भी तरह के आज फंक्शन अपने घर में आयोजित किए हैं तो वो भी अच्छी तरह से पूरा हो। इसके साथ साथ जिनकी शादी की सालगिरह है, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, इतना ही कहना है मेरे को। और जिनका शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत चुना हूं मैं। और ये गीत अलका याग्निक जी और उदित नारायण साहब पेश करेंगे। आगे बोलूंगा नहीं मैं, आप सुनिए, आनंद लीजिए।

0: जी मित्रों, एक मासूम सा चेहरा आप सुन रहे थे। चलें विज्ञापन के साथ हम आगे बढ़े।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: हमेशा सोच कर बजाते हैं कि क्या बजाना, क्या लोगों को सुनाना और क्यों सुनाना है ऐसा गीत। और जब हम ऐसे गीत बजाते हैं तो उसमें एक खबर होता है जो हम चाहते हैं कि वो खबर लोग आप तक पहुंचा दें, इसीलिए ऐसे गीत बजाते हैं। मगर उस पर ध्यान नहीं दूंगा मैं आपको लेकर चलता हूं कहाँ। आपको एक बात कहना है, जैसे गीत में सुन रहे थे कि जिंदगी बन गए हो तुम। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, प्यार में जब रिश्ता बनता है तो कभी हम देखते हैं कि एक बहुत तेज होते हैं पार्टनर और एक नहीं, लेकिन जो बंदा बहुत तेज होता है पार्टनर, वो अपने पार्टनर को जो उतना तेज नहीं होता उसको अपने स्तर पे सेम लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं सही प्यार, घनिष्ठ प्यार और एक दूसरे का देखभाल करना और उस स्तर पर ले आए सेम लेवल, ताकि कहीं कहीं जाएं तो लगे कि भाई क्या बात है, बढ़िया सा जोड़ी है, ये ध्यान में रखकर चलें। और अब जबकि 8:45 बज रहे हैं तो आज मित्रों मैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया 15 मिनट पहले लेकर आ रहा हूं, क्योंकि 8:15 मुझे यहां से निकलना है। और सर्वप्रथम आपका स्वागत तो करेंगे ही हम, मगर विज्ञापन सुन लें फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Rani Creations, aap sabka tahe dil se swagat kar rahi hai aur namaskar, sat sri akaal, aur salam, ram ram bhet kar rahi hai. Rani Creations, aapko bata dein ki somwar ko aap jante hain ki public holiday hai aur somwar ko Queensland mein public holiday hai aur is avsar par शॉप जो है रानी क्रिएशंस का वो खुली रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 2 बजे तक। याद रखना समय, सुबह 10 से लेकर शाम को 2 बजे तक। तो जो खरीदबीन है उसी समय में आप आकर कर सकते हैं। और अच्छा दिन भी रहेगा, छुट्टियां रहेगी, बच्चे भी साथ में स्कूल से एक दिन पहले, क्योंकि मंगलवार को छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेगी, तो मौका अच्छा है, समय भी ठीक रहेगा, घरेलू वातावरण में आकर शॉपिंग आप कर सकते हैं। और रानी क्रिएशंस में अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट सेल चल रहा है, और आप चुनकर कपड़े खरीदें, चाहे किड्स का हो, मेंस का हो, या लेडीज का, या शादी वगैरह कर रहे हैं उसका, या एक्सेसरीज आपको चाहिए, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हैं, एनी वी गेट अ वेरी गुड रेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं सोचा कि उदित साहब और अलका जी का गाया हुआ गीत जो है, क्योंकि फिल्म का नाम है, क्यों ना हम ए बजा दें आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग खाट पर हैं इस समय, लेटे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बाग बगीचे में काम कर रहे हैं, कुछ सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में, और कुछ पूजा पाठ में शायद व्यस्त होने वाले होंगे।

जी मित्रों, जिंदगी बन गए हो तुम, क्या बात है। बहुत प्यारा सा दो गाना था ये, लेकिन एक गाना में बहुत कुछ है। हम गीत तो बजाते हैं मगर उसके बारे में सोच

0: जय मित्रों, बहुत ही बढ़िया सा गीत आप रानी क्रिएशन के सौजन्य से सुन रहे थे। और वही रानी क्रिएशन जहां आपको हर प्रकार के कपड़े मिलते हैं और सब कुछ जो आप चाहते हैं एक छत के नीचे आपको मिलेगा, और अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट भी आपको मिलेंगे। तो अगर पहली बार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं या दूर से भ्रमण करने आए, छुट्टियां आए, तो रानी क्रिएशन शॉप में जरूर आए। और आज जैसे है, आज का ओपनिंग आवर्स है 10 AM to 4 PM और संडे को 10 AM to 3 PM।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, जो हर शनिवार को वैसे 8 से 8:15 लेकर आते हैं, लेकिन आज जल्दी कर रहे हैं 15 मिनट पहले। तो चलो अगला गीत का आनंद लीजिए, और इस गीत को भी बहुत प्यारा सुर प्रदान किए हैं कोई और नहीं मगर कौन जानते हो, चलो बतलाते हैं आपको। उदित साहब श्रेया घोषाल जी के साथ, शब्द बड़े अहम हैं।

जय मित्रों, एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम, क्या बात है। बहुत प्यारा सा गीत था। और कपड़े भाई, होल्टन एक ब्लाउज या टाई बैक ब्लाउज ये सब पहनकर थी और बहुत बढ़िया लगा। और अगर ऐसे कपड़े आपको खरीदने तो रानी क्रिएशंस में जरूर आ जाएं। बढ़िया बढ़िया साड़ी और साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउजेस या मिक्स एंड मैच हो जाएगा। चलो इस गीत के साथ।

0: जी मित्रों, इसी के साथ रानी कृष्ण का साप्ताहिक कार्यक्रम पर्यटन की दुनिया यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर एक और सेगमेंट लेकर उपस्थित होंगे ठीक 8 बजे से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, एंजॉय योर डे, एंजॉय द लॉन्ग वीकेंड, गॉड ब्लेस यू, एंड रिमेंबर फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, उलंगेबा, गो टू रानी क्रिएशंस एंड गेट द बेस्ट विद डिस्काउंट्स।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड, प्रीपेड चार्ज कार्ड, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: So, mitro, isi ke saath Rani Creations ka program yahi par khatam hua. 8 baj rahe hain Radio Brisbane ki ghadi mein. Ek baar phir swagat hai Sangeet Sargam program mein. Ek gana jo bahut mashhoor ho raha hai is samay aur bahut log sunte hain kyunki iska naya music hai. Lakshmi Nagar Music पेश कर रहे हैं YouTube चैनल पर, ओ दिलदार बोलो एक बार। शैली जी, यू एंजॉय ओल्ड सॉन्ग्स, तो चलो आपके लिए भी ये गीत मैं आपको मैं शामिल कर रहा हूँ, और आपके साथ साथ बहुत हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो ये गाना पसंद करते हैं, सुनिए।

0: और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गाना आपको बेहद पसंद आया होगा। और चलें आगे बढ़ते हैं खबर के साथ। आई थिंक मेरे ख्याल से दो गीत और शायद बजेंगे, तब तक समय हो जाएगा।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: जी मित्रों चले आगे, और जबकि 7 मिनट हुए 8 बजकर, आप परमानंद के साथ हैं। अगला जो गीत है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, नहीं कही थी बात जो तूने कभी।
2: राजा

जय मित्रों, दिल धड़का गई अभी आप सुन रहे थे। और इसी गीत के साथ साथ बस समय बहुत करीब आ रहा है और ऐसे में क्या करें, बस थोड़ा सा एक और गीत बजाना है, शायद 3:15 बजे। और याद रहे 8:30 बजे नहीं, हाँ जी हाँ, 8:30 बजे से निवेश जी आ जाएंगी टॉप 10 लेकर, और उसके बाद आप सुनेंगे क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, जी हाँ, उसके बाद आप ऑटोमेशन पे जाएंगे और फिर कल आप जानते हैं धार्मिक प्रोग्राम होता है, और धार्मिक प्रोग्राम में आप शुरू से सुनेंगे, पहले फिरोज भाई लेकर आएंगे, फिर उसके बाद नंद किशोरदास प्रभु जी लेकर आएंगे ठीक 8 बजे से वेदवाणी, और फिर जतीश पूरन जी 9 बजे से, फिर फिरोज भाई, फिर रोय सिंह साहब 12:30-2:30 बजे से सुर लेकर आएगी प्रोग्राम। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ, उम्मीद कर रहा हूँ ये गाना आपको अच्छा लगेगा।

या दोस्तों कह दे कि इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है, अगले शनिवार को पूरा करूंगा। फिलहाल हम चलेंगे कार्यक्रम के समाप्ति पर, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो सिलेक्शन आपने सुने हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगले शनिवार को एक बार फिर भेंट होगी ठीक 6:30 बजे से। यू लुक आफ्टर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल लॉन्ग वीकेंड। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजभवानी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899.
1: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहले हैप्पी वीकेंड आप सबको। वीकेंड आ गया है, मस्ती आ गई है, धूम मचाने हम भी आ गए हैं, और वो ट्रेंडी गानों का साथ भी आपको मिलने वाला है जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। मतलब ये प्रोग्राम थोड़ा खास है क्योंकि हम आपको सिर्फ गाने नहीं सुनाते हैं बल्कि बहुत ही अच्छे और ट्रेंडिंग गाने सुनाते हैं। जी हाँ, सो आइए सवार हो जाइए हमारे साथ सफर में, क्योंकि हम आपको लेकर जाने वाले हैं गानों की उस दुनिया में जहां पर हर गाना एकदम हॉट है, एकदम ट्रेंडिंग है और सबकी जुबां पर भी है और सोशल मीडिया पर भी उसके जलवे जो है वो चल रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं टॉप 10 हॉट 10 में। सबसे पहले 10वें नंबर के गाने के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। 10वें नंबर पर जो गाना है वो बहुत ही ज्यादा खास है, उसका नाम है ठुमक ठुमक, और ये है मूवी द वीवान का जो कि रिलीज हो चुकी है पिछले हफ्ते। और ये कैसा कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट। कैसा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा रहा है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट। लेकिन पहले आपको गाना सुनना होगा क्योंकि गाने का नाम है थोड़ा ठुमक ठुमक, और अगर गाने का नाम ठुमक ठुमक है तो आप भी थोड़े ठुमके लगाने के लिए रेडी हो ही जाइए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम शुरू हो गया है, गानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 10वें नंबर का गाना आप सुन चुके हैं, यानी कि 10वें नंबर का गाना है ठुमक ठुमक, और ये है मूवी द विवान का गाना। आपको मैं बता दूं कि ये मूवी जो है वो 65 करोड़ के करीब कमाई कर चुकी है। जी हाँ, अगर हम पिछले दिन के आंकड़े तक देखें तो 65 करोड़ की जो है ऑलमोस्ट कमाई ये कर चुकी है, और अगर इसके बजट की बात की जाए तो 80 से 100 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है। तो ऑफकोर्स दृश्यम 3 रिलीज होने वाली है और रिलीज हो गई है बेसिकली। सो दृश्यम 3 जो है उसके पहले जो है उसने काफी कुछ मिंट कर लिया है, लेकिन अब दृश्यम 3 के बाद क्या इस पर असर पड़ने वाला है वो देखना पड़ेगा। लेकिन स्टेडी बनी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, ये तो पक्की बात है। इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो काफी स्टेडीली जो है वो आगे बढ़ रही है। हाँ, बहुत धूमधड़ाका नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जो है वो कम नहीं हो रही है, एंड दैट इज समथिंग जो कि अच्छी बात है इस मूवी के लिए। नाउ दृश्यम 3 की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि इस मूवी का फैंडम अलग ही लेवल का है, एंड अगेन दृश्यम 3 के बाद इस मूवी पर क्या असर पड़ेगा वी डोंट नो। लेकिन इस मूवी में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड साथ में तमन्ना भाटिया देखने को मिलेंगी, एंड ये एक साइफाई माइथोलॉजिकल हॉरर ऐसे से ये जॉनर से बनी हुई मूवी है। इसमें बहुत कुछ आपको पता चलेगा, फॉरेस्ट की बहुत सारी मिस्ट्रीज आपको इसमें पता चलेंगी। सो या द विवान देखिए और मुझे बताइए आपको मूवी कैसे लगी। जैसे मैंने कहा कि तमन्ना भाटिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी काफी जबरदस्त लग रही है। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, 9वें नंबर के गाने की तरफ जाते हैं जो कि ये प्रेम। जी हाँ, ये प्रेम आगे की बात हमें

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। ये गाना सुना आपने 9वें नंबर का, और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो इस गाने को सुनते ही ऐसा नहीं लगता कि श्रेया घोषाल की आवाज कितनी खूबसूरत लग रही है, बट गेस वॉट इसे श्रेया घोषाल ने नहीं गाया है। जी हाँ, सो या ये खूबसूरत सा गाना जो है वो श्रेया घोषाल ने नहीं गाया है। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, वी कैन लिटरली फाइट यू, ये श्रेया घोषाल ने ही गाया है। जी हाँ, चलिए ठीक है, आपको ठगाने की कोशिश कर रही थी। वेल, एक बात तो पक्की है कि अगर मैं आपको थोड़ा ठगाने की कोशिश भी करूं तो भी आप पहचान जाओगे कि नहीं, निव्या शर्मा तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये श्रेया घोषाल की आवाज, ये इतनी मीठी आवाज किसी की और हो ही नहीं सकती। तो श्रेया घोषाल के साथ इसे गाया है निहाल त्वारो ने, और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो मूवी का है जिसका नाम है ये प्रेम मोलिया। जी हाँ, सो टाइटल ट्रैक ही है और ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। एंड गेस व्हाट, ये गाना ना आपको पुरानी वो अर्ली 2000s की जो प्यारी सी मूवीज होती थी ना, सूरज बड़जात्या जी की, वैसी ही मूवीज का आपको ख्याल जो है आपके दिमाग में लाने वाली है, क्योंकि ये भी सूरज बड़जात्या जी की ही मूवी है। जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी मूवीज जो है वो आप देख पाओगे इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। सबसे पहले दृश्यम 3 हो चुकी है रिलीज, एंड दृश्यम 3 कितनी मिस्टीरियस है, कितनी जबरदस्त मूवी है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत है, या यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड इसमें आपको तब्बू वापस मिलने वाली है, इसमें आपको श्रेया सरन, अजय देवगन वापस मिलने वाले हैं, इसमें आपको इशिता दत्त भी वापस मिलने वाली है, और वो सारी की सारी मिस्ट्री, मतलब एक नॉर्मल सा इंसान लेकिन वो कितना खतरनाक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इट्स फैमिली, यही इस फिल्म की कहानी है। अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई हाईली हाईली हाईली रिकमेंडेड। जी हाँ, और ये गाना 8वें नंबर का इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा खास है। हम इसमें आपको बहुत सारे गाने सुनाते हैं, लेकिन वो गाने चुनिंदा होते हैं, मतलब चुन चुन कर आपके लिए लाए जाते हैं, और उन्हीं गानों से मिलकर बनता है हमारा ये प्रोग्राम। एंड ऑफकोर्स हम आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने वीकेंड पे क्या क्या देख सकते हो नजदीकी सिनेमाघरों में और क्या क्या मस्ती कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे मैंने आपको बताया कि दृश्यम 3 एंड द वीवान जो है वो रिलीज हो चुकी है। द वीवान जो है वो पिछले हफ्ते ही रिलीज हो गई थी। दृश्यम 3 इस हफ्ते रिलीज हुई है, और इसके अलावा और कौन कौन सी मूवीज है जो कि आप देख सकते हो। अब जो मूवी है जो कि इसके अलावा आप देख सकते हो वो है प्रेम कीटाणु, जो कि अगेन इसी ही हफ्ते रिलीज हुई है, और इसका एक गाना भी है जो कि हमारी लिस्ट में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा गाना है। सो प्रेम कीटाणु भी आप देख सकते हो। इसका जॉनर क्या है? इसका जॉनर है कॉमेडी एंड रोमांटिक, मतलब ये रोम कॉम है, और इसमें आपको अपार शक्ति खुराना, वीर पहाड़िया और आफिया सैयद जो है वो देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ एक और मूवी जो कि साउथ से आती है, द पैराडाइज, वो भी आप देख सकते हो। एंड अगेन ये मूवी जो है वो आपको एक्शन एडवेंचर ड्रामा, जो कि लिटरल टिपिकल सिग्नेचर साउथ मूवीज होती हैं, वो वाला एक्सपीरियंस देने वाली है। जी हाँ, इसी के अलावा एक थ्रिलर अगर आप चाहते हैं तो आपको वो भी मिलेगी, क्राइम ड्रामा थ्रिलर दायरा, और इसमें आपको अपनी करीना कपूर खान यानी कि अपनी बेबो जो है वो देखने को मिलने वाली है, और साथ में उनके होंगे, मतलब ये बॉलीवुड और साथ में साउथ के स्टार्स को मिलाकर मूवी बनाई गई है। पृथ्वीराज सुकुमारन और साथ में करीना कपूर खान इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ क्राइम थ्रिलर, सो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोना लाइक इट। इसके अलावा वाइब जो है प्रीति जिंटा के, अगर आप फैन हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि अगेन थिएटर्स में लगी हुई है। इसमें प्रीति जिंटा है और इसमें है साथ में कुणाल खेमू, और ये मूवी जो है वो है एक्शन एंड कॉमेडी जॉनर से बन के बनी हुई। जी हाँ, सो ये मूवीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मूवीज है जिनको आप देख सकते हैं। आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, लेकिन पहले हम आपको गाना सुनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है रंगियारा, जो कि है मूवी हैवान का, थिएटर्स में लगी हुई है। वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी।

जी दोस्तों, रंगी आरा खुशियों के रंग घोल दे। मूवी हैवान का ये गाना आपको बहुत कुछ बताने वाला है। इट्स ऑल्सो अ थ्रिलर और इसमें सैफ अली खान एक अंधे व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति का वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो हीरो भी है मूवी के। और इसमें हैवान, जी हाँ, क्योंकि मूवी का नाम है हैवान, तो इसमें ऑफकोर्स एंटागनिस्ट तो होगा ही, कोई विलन तो होगा ही। एंड गेस व्हाट, इसमें विलन का कैरेक्टर प्ले किया है अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार आपको हमेशा से हीरो के कैरेक्टर्स में नजर आए हैं, लेकिन यहां पर वो विलन बने हैं और क्या जबरदस्त विलन बने हैं। जी हाँ, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए पहले बॉबी देओल को चुना गया था, लेकिन जब बॉबी देओल इसमें काम नहीं कर पाए तो ये मूवी ऑफर की गई अक्षय कुमार को और अक्षय कुमार ने इसे कर लिया। जी हाँ, मतलब एक हीरो विलन ना चाहे ये बहुत कम होता है। जी हाँ, सो इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी भी आप देख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आपको बता रहे हैं उन मूवीज के बारे में जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा है हनुमान अंश जो कि आप देख सकते हैं, और ये मूवी तो लिटरली कमाई पे कमाई कमाई पे कमाई करती जा रही है, और मुझे लगता है कि सच में इस पे भगवान का आशीर्वाद है और इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये लिटरली बॉलीवुड का डार्क हॉर्स बनकर आगे की ओर बढ़ी है। एक ऐसी प्रोड्यूसर जिसने पहली बार प्रोड्यूस किया, अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स जो है इस मूवी में झोंक दी, और एक ऐसा एक्टर जिसने बैक स्टेज सिर्फ चाय पानी सर्व किया था एक्टर्स को, पहले कोई उम्मीद नहीं थी एक्टर बनने की, लेकिन यहां पर उन्हें एक्टर बनाया गया। और बाकी सारी जो कास्ट भी है उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो बैक स्टेज लोगों को ही लिया गया है, क्योंकि जो हीरो था उसने इस मूवी को छोड़ दिया। अब उनके पास हीरो नहीं था, पैसे की भी कमी थी, बजट की भी कमी थी, तो उन्होंने देखा कि इनको चूज किया जाए, और वैसे ही इस मूवी को बना दिया गया। और क्या खूबसूरत मूवी बनाई है, और इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस वजह से ये मूवी कमाई पे कमाई, मतलब 400 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जिसका नाम है समझो ना। जी हाँ, और ये है मूवी द विवान का गाना ऑफकोर्स।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है।
1: सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
0: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
0: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है।
1: सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
0: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
0: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, वीकेंड का वार है और मूवीज की बहार है, पक्की बात है। मतलब इतनी सारी मूवीज लगी हुई है थिएटर्स में कि आपको चुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये देखूं या ये देखूं, ये देखूं या ये देखूं, फिर चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे फिर वो बॉलीवुड यानी कि इंडियन मूवीज हो। नाउ, अब हमने आपको इंडियन मूवीज के बारे में तो बता ही दिया है, अब जरा चलते हैं सीधा हॉलीवुड मूवीज का रुख करते हैं। क्या आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो और क्या आपको अकेले अपने दोस्तों के साथ देखना पड़ेगा? आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। सबसे पहले जो मूवी है वो है रेजिडेंट ईविल, जो कि पिछले 2 हफ्तों से लगी हुई है। एंड गेस व्हाट, ये मूवी बहुत अच्छा काम भी कर रही है और लोगों की आत्मा बाहर आ जाए ऐसे उनको डरा भी रही है थिएटर्स में। सो अगर आप लोगों को हॉरर मूवीज, गॉथिक मूवीज पसंद है तभी इसको देखने जाइएगा, अदरवाइज रहने दीजिए, अपना रोम कॉम देखिए, कुछ कॉमेडी देखिए, ये सबके बस का नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो डोरेमोन की एक मूवी दिखाने, जो कि लगी हुई है थिएटर्स में। मूवी का नाम है डोरेमोन कैसल ऑफ अंडरसी डेविल। जी हाँ, ये मूवी आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो लिटरली। सो यू हैव समथिंग टू वॉच विद योर किड्स, लेकिन यू कैन लिटरली टेक योर किड्स आउट एंड वॉच दिस मूवी एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। और आपको तो पता ही है डोरेमोन से जो प्यार है बच्चों को, वो तो आपसे भी नहीं होगा, सच में बता रही हूँ मैं। जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एवेंजर्स एंड गेम इन कोर लगी हुई है। और ये कोई नई एवेंजर मूवी नहीं है, ये पुरानी वाली ही है जो एंड गेम लास्ट में आई थी 5-6 साल पहले। लेकिन इस मूवी को इसलिए मार्वल ने फिर से लगाया है क्योंकि लोग इसे देखना चाहते थे और लोग फिर से फ्रेशन अप होना चाहते थे कि ओ ठीक है, फिर से थोड़ा तरोताजा हो जाए क्या क्या हुआ था, बिकॉज एवेंजर्स डूम्स डे आ रही है नवंबर में एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट एंड नॉट जस्ट मी, आई थिंक एवरीवन जो भी मार्वल फैन है, और मार्वल फैन नहीं भी है तो भी एक्साइटेड है। लाइक लिटरली this movie is मतलब fantastic। so उसे देखने से पहले आप थोड़ा तरोताजा कर लें अपने दिमाग को, फिर से रिफ्रेश कर लें, फिर से वो सारी चीजें याद कर लें जो कि आपको एवेंजर्स एंड गेम में सर्व की गई थी। सो एवेंजर्स एंड गेम इन कोर लगी हुई है थिएटर्स में, गो एंड वॉच इट एंड लेट मी नो अगर आप पहली बार देख रहे हैं कैसे लगी आपको। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और गाना आपको सुनाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। गाने का नाम है बैंगर। जी हाँ, और ये बादशाह का गाना है। सो बादशाह के 2 गाने इस लिस्ट में ट्रेंड कर रहे हैं, पहले बन जा तू मेरी, जी हाँ, और अब ये बैंगर। और ये गाना जो है सच में बैंगर जैसा ही है। इसका म्यूजिक जो है वैसा, इसकी बीट इतनी हाइप वाली है ना, मतलब अगर आप नहीं भी पसंद करते हो बादशाह के गाने तो भी आपको मजा आएगा इस गाने को सुन के।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

बैगाने का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, या तो बैंगर या तो बैन, मतलब या तो एकदम हिट हो जाएगा या तो बैन हो जाएगा, ऐसा ही गाना मैं बनाऊंगा। और ये है बादशाह फॉर यू। जी हाँ, अब आप लोग कहोगे कि ये गाना अच्छा लगता है अगर इसमें रैप नहीं होता, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये काफी सारे लोग कहते हैं, बट बहुत सारे लोग फैन भी हैं बादशाह के रैप के। सो आप मुझे बताइए, क्या आपको बादशाह का रैप अच्छा लगता है या बादशाह की गायकी अच्छी लगती है या नहीं, जरूर मुझे बताइए। और अगर अच्छी लगती है तो कौन सा फेवरेट गाना है आपका बादशाह का। जी ऐसे के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, और ये है सांसों की माला में। बाय द वे मिर्जापुर द मूवी भी लगी हुई है थिएटर्स में, इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रांग। और ये मूवी तो आप अपनी फैमिली के साथ ना ही देखे तो बेटर रहेगा, मतलब ये आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, या तो अकेले देख सकते हैं या तो अपने बीड़ू लोगों के साथ देख सकते हैं, बिकॉज मूवी में बहुत सारी गालियां हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग स्टफ भी है, बट अगेन मिर्जापुर की फैन फॉलोइंग कल्ट फैन फॉलोइंग है, मतलब वो फैन फॉलोइंग जो कि मिर्जापुर के अलावा किसी और चीज को पसंद नहीं करती। सो ये इसी टाइप की फैन फॉलोइंग के साथ ये मूवी आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है। अगेन ये थिएटर्स में लगी हुई है तो आप देखिए, क्योंकि इससे पहले आपने इसे सीरीज फॉर्म में देखा था, अब आप गुड्डू भैया को थिएटर में जाके देखिए।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: जी दोस्तों, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ने का वक्त हो गया है और आगे की ओर बढ़ने से मेरा मतलब है एक और गाना आपको सुनाने का वक्त हो गया है और उस गाने का नाम है दो नंबरी। जी हाँ, अगेन ये भी मिर्जापुर द मूवी का गाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM, शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और इस प्रोग्राम की बात यही है खास कि इसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ हिट गाने सुनाते हैं, ट्रेंडिंग गाने सुनाते हैं और ये दो नंबरी भी कुछ वैसा ही है। सो मिर्जापुर द मूवी का गाना है दो नंबरी और लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि बंदा जो है वो एक नंबर का है लेकिन धंधा जो है उसका वो दो नंबर का है। सो ऐसा ही कुछ है और मिर्जापुर मूवी वैसी ही आपको पता ही है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूं कि दृश्यम 3 अगर आप देखने जा रहे हैं और अगर आप मिस करने वाले हैं अक्षय खन्ना को, तो एक बात हुई थी कुछ वक्त पहले, एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि जब धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 में काम करने से मना कर दिया था और उसके बाद जयदीप अहलावत को उस मूवी में लिया गया। अक्षय खन्ना का रोल जो है वो एग्जैक्टली जयदीप अहलावत ने नहीं किया है लेकिन वहां पर उन्होंने उन्हें रिप्लेस किया है। अक्षय खन्ना ने कह दिया था सीधा सीधा कि मैं अपनी फीस बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि धुरंधर से उनको जो सक्सेस मिला था उस सक्सेस के बाद उन्होंने कह दिया था कि मैं इतने पैसे में काम नहीं करने वाला हूं, अब मैं ज्यादा पैसे चाहता हूं। तो दृश्यम 3 के मेकर्स ने उन्हें वो देने से मना कर दिया, हेंस उनकी आउट जो है उनको कर दिया गया उस मूवी से और उन्होंने खुद भी यह मूवी छोड़ दी। उसके बाद जयदीप अहलावत आपको इसमें नजर आने वाले। सो दृश्यम 3 देखिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है और उसका ट्रेलर आ गया है जो कि काफी वेव बनाए हुए है। लेकिन पहले ये गाना जो कि है मिर्जापुर द मूवी का।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये गाना मुझे पता है आपको काफी मस्ती तो इसने करने पर मजबूर कर दिया होगा। मतलब अगर आप ये गाने सुन रहे हो और अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ऑल्दो ये गाना हरियाणवी में है और शायद बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं भी आएंगी, लेकिन इसकी जो वाइब है, इसकी जो ट्यून है, वही काफी है आपको वाइब कराने के लिए। मतलब आपको मजा आएगा, मजा। जी हाँ, और ये गाना है मिर्जापुर द मूवी का। अगेन आप देख सकते हैं उसे थिएटर्स में, बट अगर आप नहीं देख सकते कर्सिंग वाली मूवीज, थोड़ा सा सीरियस और खतरनाक सा कंटेंट, तो आप मत जाइएगा, बिकॉज दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। अगेन इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे नंबर के गाने की बारी आ चुकी है, विच इज कहो तो। जी हाँ, और ये खूबसूरत सा गाना है प्रेम कीटाणु मूवी का, जो कि रिलीज हो गई है इसी हफ्ते, यानी कि पिछले कल फ्राइडे को। आप देख सकते हैं उसे भी। और इसके साथ ट्रेलर आ गया है एक मूवी का, जो कि है नई नवेली। यामी गौतम को अगर आप मिस कर रहे थे तो आपको ज्यादा दिन उन्हें मिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही उनकी मूवी रिलीज होने वाली है, और वो भी है थोड़ी सी हॉरर, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी सीरियस। जी हाँ, यामी गौतम डायन का कैरेक्टर प्ले कर रही है अपेरेंटली। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे और इवेंचुअली मूवी देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे से होती है ट्रेलर की, कि भाभी तो डायन है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो बंदा कह रहा है जिसकी भाभी बन के यामी गौतम गृह प्रवेश कर रही है। बस फिर क्या है, फिर आपको तभी पता चलेगा जब आप मूवी का ट्रेलर देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। पर अभी से रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो रेडी रहिए। इसी के साथ अगला गाना कहो तो फ्रॉम द मूवी प्रेम कीटाणु। उससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रेम कीटाणु भी बाकी कीटाणुओं की तरह ही है, मतलब एक बार प्यार हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है फिर। इट्स जस्ट लाइक यू नो व्हाट, कीटाणु कीटाणु वाला कीटाणु।

बेहद ही खूबसूरत गाना, बहुत ही प्यारा गाना कहना पड़ेगा। प्रेम कीटाणु मूवी कैसी है या अच्छी है या बुरी है या ठीक ठीक है वो तो अभी बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर गाना इसका बहुत प्यारा है, ये तो पक्की बात है। दोस्तों इसी के साथ अब हम नंबर वन सॉन्ग पर पहुंच गए हैं, विच इज अगेन फ्रॉम द मूवी द मिर्जापुर। मिर्जापुर के 3 से 4 गाने इस लिस्ट में ट्रेंड कर रहे हैं, आप सोचिए, मतलब बॉक्स ऑफिस पे रूल कर रही है मूवी, गाने रूल कर रहे हैं हमारी लिस्ट पर, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ नंबर वन सॉन्ग सुनने के लिए रेडी हो जाइए, विच इज वारू फॉरएवर फ्रॉम द मूवी मिर्जापुर। एंड इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलना होगा अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, और वीकेंड को मस्ती से एंजॉय कीजिए।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
14: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
13: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co. स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009. प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स. कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर.
11: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
15: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
15: बिल्कुल. ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360. ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।